बिरिज अधेरीमा ज्योति जगाऊ, बिजुली झे आकाशमा तिमी रमाऊ, चुनकिरी झे अधेरीमा ज्योति जगाऊ।